BFB Scorecard Reviews, Sunil and Sarah Karikram Namaste, Kimahon and Sasrata, Rasami Hamersanga, Art Bizera, Taro Minit Gaigusa, Rababani, Art Bizera, Tais Minit Zadakiri Tabri Logati Pounhunisa, BFB Sambad Yukdaikusatma, Raza Kurakani Rekusu, W2 Suman Sherpa, Wasangareku, Part 1 से 8 बजे 28 मिनट ज्यादा होने से Part 2 से 9 बजे को लागी 13 मिनट बाकी होता होने से र कार्यक्रम आउनु समय अगाडि बढ्ने नै छ अहिलेलाई एसटी योगी र अञ्जु पन्तको आवाजमा चानी जालपा

0: मकाक खबर इतनी नहीं, नमस्कार नमस्कार।
1: यो बी एफ बी एस कुल खबर रेडियो।